0: गोल्ड एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सन्चे सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: डिजिटल
0: कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू।

विलाप समृद्धि योजना योजना साथ में प्रतिफल हाथ में यही 2083 वैशाख 29 गते देखि म्यूचुअल फंड को आवेदन खुलते रिलायबल समृद्धि योजना दुई को छिटो में जेठ 1 गते समय यो आवेदन बंद होने त्यसैले मिति याद रख 2083 वैशाख महीना को 29 गते रिलायबल म्यूचुअल फंड को आईपीओ खुलते है इकाई में लगानी पूर्ण रूप में जोखिम मुक्त न होने हुआ लगानी करूर्व विवरण पुस्तिका राम्ररी अध्ययन गर्नु होला।

नमस्कार। पूर्वी नेपाल के पहलो सामुदायिक रेडियो सोलू एफएम 102 मेगाहर्ज देश का विभिन्न भाग www.soluefm.com संसार भर के साथ प्रसारण भईर बिहान 7 बजे सोलू समाचार लेकर आईपुगे सरस्वती पुरी। सोलु समाचारको शुरूआतमा मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू। सोलुखुम्बुमा 18 दिने विपत्ति स्वयंसेवक परीक्षा।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन क्षेत्रमा। हुंडा का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
2: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी। ओखलढुंगा र खोटाङ को डिजिटल बजार फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सबै मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुक मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बुकिंग करे भुगतान करे में होम डिलीवरी को सुविधा समेत रहने।
2: ओखलढुंगा को आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भिजाई ओखलढुंगा।
1: संपर्क नंबर 0375902222 9852880222 र 9842880300।
3: मौसम सम्बन्धी सही सूचना प्राप्त गरौं, सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौं, मौसम तथा जलवायु सम्बन्धी सूचना लिने र दिने गरौं, मौसम पूर्वानुमानको जानकारी नियमित रूपमा लिने गरौं, प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सचेत बनाऊ, जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन सामूहिक प्रयास गरौं, वन संरक्षण र वृक्षारोपणमा सक्रिय सहभागिता जनाऊ, ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढ़ाऊ, वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाऊ, वातावरण संरक्षण गरौं, जीवन रक्षा गरौं।
4: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा

मान्यता सबसे दूसरी सो की आजकल आत्मता यूनिटी कार्पेट को विगत तीन दशक देखी को सुदूर साथ यदि कार्पेट के अंदर कार्पेट को पछाड़े यदि को लोगों ने न बिस्मिल होला यदि कार्पेट कार्पेट को शुरू साथ

0: নাগরিক সহায়তা কক্ষের সঞ্চালন নিশ্চিত আদালত বা গ্রহণ মহানুভাবের যাতায়াত ব্যবস্থা কারণে বাট প্রবাহের সেবা প্রাপ্তি সহজকরণ নাগরিক সহায়তা কক্ষের সঞ্চালন উক্ত কক্ষ বাট নিশুল্ক সেবাহ প্রাপ্ত সেবা প্রাপ্তি নাগরিক সহায়তা কক্ষ বা সম্পর্ক রাখ অনুরোধ করি সেবা প্রাপ্তি কক্ষ প্রলোভন নেতারি আপনার সেবা লি হার্দিক অপিল করব সেবা প্রাপ্তি কোনো গ্রাস আইন রাষ্ট্রশূন্য অধিকার কারণে প্রমুখ সম্পর্ক রাখা সক্রিয়
1: প্রদেশ সরকার আন্তরিক মামলা তথা কানুন মন্ত্রণালয় বিরাটনগর
2: সূচনা সূচনা সূচনা নিঃশুল্ক আবাসী খাতা বৃত্তির লাগি সূচনা
3: কাঠমান্ডুমা সঞ্চালিত এক প্রতিষ্ঠিত অঙ্গ্রেজী বিদ্যালয় দ্য স্কাই মার্কি স্কুলমা কক্ষা এক দেখি এসইই সম্ম নিঃশুল্ক আবাসী ছাত্র বৃত্তিমা অধ্যয়ন করান অর্জুন রায় বেল বোর্সা ফাউন্ডেশন বাট স্পন্সর কি প্রদান করে কক্ষা এক মা ভ্রমণ নিমিত্ত প্রতিস্পর্ধামা ভাগ লিনে ইচ্ছুক খোটাং জেলা ভিতরকা অধ্যয়নরত বিপন্ন উৎপীড়িত আদিবাসী জনজাতি ছাত্র ছাত্রা আবেদনক এসি সূচনা মার্ফত সম্পূর্ণ জানকারী গনাইছ
4: আবেদন দিনের ছুট প্রক্রিয়া ভাগ লিনে অন্তর্নীতি এই বিষয় প্রত্যন্তম সব জানকারী কাগি সম্পর্ক নম্বর 98 51 53 85 সাথে সম্বন্ধিত বিদ্যালয় পালিকা কলা অর্জুন রায় দোলগোছা ফাউন্ডেশন ফেসবুক পেজমা হেন সকলেশ
3: অর্জুন রায় দোলগোছা ফাউন্ডেশন খানখুয়া খুঁটাই
5: ঠট্টাই মাগো বৈশা জান লাগো জাদাই বাঁচা খির পর্খ লিন আউলা
6: হইন এ কাঞ্ছা গীত গাউদে কোটাই নি
7: জাপানিজ ভাষা পড়ে জাপান যাও কি ভনেকো দিদি গাউমা জাপানিজ ভাষা পড়াই নহুনে রয়েছ
6: খোজ্দি হিঁড়ে সংসার ভেটিন্ছ রে নি বরু কোন ঠাউমা রাম্রো পড়াই হুছ ভনের চাইকো হো ভনে ম বতাইদিন না হে
7: मेरो त मत चाहिँ यही हो जापान जान कुन इन्स्टिच्युटमा राम्रो पढाइ हुन्छ अनि के प्रोसेस गर्नुपर्छ थाहा नपाएर तनावमा पो छु हौ
6: अब चिन्ता नमान कान्छ ओरियन बिजनेस ग्लोबल इन्स्टिच्युट सावन चोकमा जापानी भाषा पढ्ने अनि जापान जाने
7: होइन त्यही इन्स्टिच्युटमा चाहिँ किन पढ्ने त अरू छैन त पढ्ने ठाउँ
6: ओरियन बिजनेस ग्लोबल इन्स्टिच्युटमा अरूको भन्दा छुट्टै विशेषता छ यहाँ जापानबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका तथा जापानी शिक्षकहरूबाट भाषा कक्षा पढाउनुको साथै साप्ताहिक नियमित टेस्ट कक्षा छुट्टीमा पनि एसेप्ट गरिने र बिना झन्झट जापान जान प्रशिक्षण समेत गरिन्छ त्यसका साथै कम मार्क्स ल्याएका वा कम जीपी ल्याएका ब्याक लागेर पास भएकाहरूले पनि जापानमा पढ्न जान अप्लाई गर्नु र जापानको टोकियो ओसाका नागोया फुकुओका लगायतका शहरमा जाने सुविधा पनि उपलब्ध छ
7: सबै कुराको सुविधा त थाहा भयो दिदी कक्षा सञ्चालन कति छ हुँदैछ
6: सुन कान्छा यस इन्स्टिच्युटमा जापानिज भाषा कक्षा बिहान 6 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म नियमित भइरहेका छन् त्यसैले आफू चाहिँ सुरक्षित गरिहाले कान्छा
7: ल दिदी म त हिँडे ओडन बिजनेस ग्लोबल इन्स्टिच्युटमा तपाईँहरू पनि आउनुहोस् है
8: हजुर सबैको विश्वासी र भरपर्दो जापानिज भाषा पढाउने इन्स्टिच्युट ओनियन बिजनेस ग्लोबल इन्स्टिच्युट चावेल केएल टावर छैटौं तला काठमाडौँ सम्पर्क
6: 98 50 17 979
8: र 01 5 92 26 16 वेबसाइट www.obgi.edu.np ओरियन बिजनेस ग्लोबल इन्स्टिच्युट ओबीजीआई एजुकेशन कन्सल्टेन्सी नेपाल चाबहिन टिचेपाटी काठमाडौँ
9: हेलो दाई नमस्कार
10: नमस्कार भाइ कता छौ
9: म त गाउँमै छु नि दाई एलडी परीक्षा सकेर बसेको साथीभाइ सबैले काठमाडौँ गएर कलेज छानिसके कहाँ पढ्ने के पढ्ने म त अल्माउमा परे दाई
10: अल्माउमा पर्ने कुरै छैन भाइ एनसीडीका साथीभाइ चाबहिनको मनाइसुन कलेजमा आएर बुझेर तिमी पढ्ने निर्णय गरेर गइसके तिमी पनि ढुक्क भन्दा अब तिमी पढ्ने किनकि मनाइसु आज लाखौं विद्यार्थीको सही गन्तव्य हो मनासु
11: वर्ल्ड कॉलेज शांत तथा अनुशासित शैक्षिक वातावरण उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधार दक्ष शिक्षक शिक्षिका आईएसओ सर्टिफाइड अतिरिक्त क्रियाकलाप साथ ही यू कॉलेज ने विद्यार्थी में रहकर अंतर्निहित प्रतिभा पहचान करी उजागर करना मदद करते आये न्यूनतम शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा मनासुन वर्ल्ड कॉलेज साबुन सुसीवादी संपर्क नंबर 9803-6232-82 9803-6232-87
12: सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देशहरू तपाई सवारी चालक अनुमति पत्र लिन चाहनुहुन्छ भने अनलाइन फर्मको लिंकमा गएर आफ्नो विवरण भरी तयार भएको आवेदन फर्म डाउनलोड गरी तोकिएको दिन सकल कागजात सहित कार्यालयमा जानुहोस्। सवारी चलाउँदा सवारी चालक अनुमति पत्र जहिले पनि आफ्नो साथमा राख्नुहोस्। सवारी चालक अनुमति पत्रको ई कपीको लागि अनिवार्य नागरिक एप प्रयोग गर्ने बानी बसालौं। नागरिक एपमा भएको सवारी चालक अनुमति पत्रलाई ट्राफिक प्रहरीबाट पनि मान्यता प्राप्त भएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र 5 वर्षका लागि बहाल रहन्छ। म्याद सकिएको 90 दिनभित्र नजिकैको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गएर नवीकरण गर्नुहोस्। म्याद नागिसकेपछि ढिला गरेमा थप जरिमाना 1 वर्षमा 100% र 5 वर्षसम्म 500% लाग्न सक्छ। 5 वर्ष नागेपछि सवारी चालक अनुमति पत्र स्वत रद्द हुनेछ। चालकले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अनुसारका शर्तहरू पालना नगरेमा सवारी चालक अनुमति पत्र निलम्बन 6 महिनासम्म हुन सक्छ। सवारी चालक अनुमति पत्र हराएन वा नष्ट भएमा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सिफारिश समेतमा आधारमा प्रतिलिपि लिन सकिन्छ। सवारीको प्रकार थप्नु परेमा वर्ग थप एक क्याटागोरीको लागि अनलाइन फर्म भरेर तोकिएको दिन कार्यालयमा जानुहोस्। नवीकरण गर्दा सकल नागरिकता पुरानो सवारी चालक अनुमति पत्र रसिद आवश्यक हुँदछ। सवारी चालक अनुमति पत्र हुनु भएको जिम्मेवार हुनु हो। ट्राफिक नियम सड़क चिन्ह र गति सीमाको अनिवार्य पालना गरी सुरक्षित यात्रा गर्नुहोस्। ई रिक्सा सम्बन्धी तपाई ई रिक्साको लिखित परीक्षा दिन चाहनुहुन्छ भने अनलाइन फर्म भर्दा ई रिक्साको सीमा छनौट गरी स्वयं परीक्षा मात्र दिएर सवारी चालक अनुमति पत्र लिन सक्नुहुन्छ। सवारी चालक अनुमति पत्रको 2082 14 भन्दा अगाडि 5 वर्ष र 14 भन्दा पछाडि नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्र लिँदा र सवारी चालक अनुमति पत्रको नवीकरण गर्दा 10 वर्ष अवधि कायम भएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी सेवा लिन तपाईंलाई कसैको सहयोग आवश्यक पर्दैन। स्वयं व्यक्ति उपस्थित भई सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। लाइसेन्स सम्बन्धी सेवा लिँदा सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा बढ़ी रकम कसैलाई पनि नदिनुहोला। आफूले तिरेको रकमको बिल अनिवार्य लिनुहोला।
13: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेश

0: World's number one tire brand.
1: के तपाईं झाड़, कम्मर, घुड़ा, गर्दन दुख्ने समस्या, यूरिक एसिड, बाथ रोग, नसा संबंधी समस्या वा अन्य कुनै दीर्घ रोगबाट पीड़ित हुनुहुन्छ?
2: यस्ता समस्याको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट सर्वसुलभ उपचारका लागि बागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फतको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयलाई आदेश सम्झनुहोस्।
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओपीडी सेवा,
1: विशेषज्ञ ओपीडी सेवा,
2: निशुल्क औषधि वितरण,
1: सशुल्क फार्मेसी सेवा,
2: फिजियोथेरापी सेवा,
1: अकुपंचर सेवा,
2: योग परामर्श सेवा,
1: क्रियाकल्प सेवा,
2: पूर्व कर्म पञ्चकर्म सेवा,
1: क्षार सूत्र सेवा,
2: जलौका सेवा,
1: अग्निकर्म लगायत अन्य विभिन्न सेवाहरू,
2: प्रयोगशाला सेवा बिहान 8 बजेदेखि 3 बजेसम्म।
1: विस्तृत जानकारीका लागि
2: आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय बागमती करिडोर कैलीगाउँ काठमाडौँ, फोन नम्बर 01-4110-6690, 98514-2463।

0: साल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन क्षेत्रमा।
2: होंडा का विशेषता
3: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भरपर्दो
3: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
3: सब उम्र समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
2: हाम्रा सेवाहरू
3: ओखलढुंगा र खोटाङ को दिक्कल बजार बाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जुनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विसिंग सेवा
3: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
2: अनलाइन बाट बुकिंग गरे भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ।
3: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गोरुमारे भुजाई ओखलढुंगा।
2: सम्पर्क नम्बर 037590222 9852880222 र 9842480300।
4: मौसम संबंधी सही सूचना प्राप्त गरौ, सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौ, मौसम तथा जलवायु संबंधी सूचना लिने र दिने गरौ, मौसम पूर्वानुमान को जानकारी नियमित रूपमा लिने गरौ, प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरण सचेत बनाऊ, जलवायु परिवर्तन का असर घटाउन सामूहिक प्रयास गरौ, वन संरक्षण वृक्षारोपण में सक्रिय सहभागिता जनाऊ, ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जा को प्रयोग बढ़ाऊ, वातावरण प्रदूषण नियंत्रण में जिम्मेवार बनाऊ, वातावरण संरक्षण करौ, जीवन रक्षा करौ।
5: आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहित में जारी संदेश।

0: 才华就你所努力的功能
1: Solu FM 101.2 MHz Usual Bhavishya ko lagi hamro abhiyan
2: Sanche Solu FM Studio Time
3: AM
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुकुम नगर पालिका 5 सोलू कुंडू

0: ला आपने मरती हम
1: नमूना दुधकुंड आयल फार्म स्टोर हम प्रतिबद्धता पेट्रोलियम पदार्थ में शुद्धता यहाँ डीजल पेट्रोल तपाईले भनेकै समय में तुरंत उपलब्ध छ। संपर्क व्यक्ति परशुराम तामाङ 9847-87-35-19 समुद्र साक्य 9861-83-35-34 टेलीफोन 0385-20-43। नमूना दुधकुंड आयल फार्म स्टोर प्रोपाइटर पूरण कुमार श्रेष्ठ 9862-82-13-87 नमूना दुधकुंड आयल फार्म स्टोर संगे न्यू आई फॉर मोटर पार्ट्स एंड सप्लायर्स में संपूर्ण गाड़ी मरमत संबंधी सेवा उपलब्ध छ। यहाँ साना तथा ठूला जुनसुकै गाड़ी मरमत कर संपर्क रमीला श्रेष्ठ 9862-93-46। नमूना दुधकुंड आयल फार्म स्टोर सोलू दुधकुंड नगरपालिका साथ गारमा थोर बौद्ध सुलुखुंडू
2: बाबा मैं आज स्कूल जाने मन छेन आज जाने
3: नहीं
2: ये जाने मन लगे
3: मैं
2: साइंस को कंट्री कर सकिन सर
3: लेकिन मिम संगे जा नमस्ते मैडम म रीना गुरुङ
4: नमस्ते कति टाइमले पाउनु भयो
3: आज रीनाले स्कुल जान्न भनी साइन्सको कन्ठ गर्न सकिन अरे सरले पिट्नुहुन्छ भन्दैछ
4: ओहो हो र हजुर आएर राम्रो गर्नुभयो विद्यार्थीलाई कुट्न तर्साउन कहीँ पाइन्छ र विद्यार्थीलाई शारीरिक तथा मानसिक सजाय गरी एक वर्षसम्म कैद र 50,000 जरिमाना हुन्छ म साइन्सको सरलाई सम्झाउँछु रीना तिमी क्लासमा जाऊ त सरले केही गर्नुहुन्न
5: हस् म्याडम नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।

0: も感動を飛ばしてください。
1: सुरुंगिन देशी जोड़ने सड़क निर्माण कार्य हाल सुरुंग क्षेत्र संचालन भैर निर्माण कार्य क्रम में मथिलो सुरुंग ढुंगा खस्ने संभावना रहता तल्लो खेरा साधन क्षेत्र में घासपात काटने गाई बस्तु चढ़ाने तथा आवत जावत करने पूर्व स्थानीय वासी तथा सर्वसाधारण सावधानी अपना इस सूचना मार्फत अनुरोध कर अनावश्यक रूप में न जानु देश में आपका बाल बालिका तथा चौपाया समेत सुरक्षित राखी देश सुनी जिन देश की उपभोक्ता समिति।

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन सूचना
1: का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भद्रदो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
2: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङ को डिजिटल बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सबै मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सपेंस गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरे भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारी भुजान ओखलढुंगा
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852988022 र 9842803000

0: क्षमता मेरो कपड़ा फैंकिंग कर दूध सामजू को मिसेस कैंसर उपचार करा इंडिया संगे लिएर जानु पर्यो
1: अनि सुन्नु त अब क्यान्सर को उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिङ भएको 60 काउस र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर फोक्सोको क्यान्सर स्तन क्यान्सर घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर पाठेघरको मुख गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसन को माध्यम पूर्ण रूप में निको होने करी उपचार कर सरकारी अस्पताल के सेवा शुल्क में उपचार होने का साथ ही सरकार प्रदान कैंसर पीड़ित का एक लाख समय को छूट को व्यवस्था
0: यो सुविधा रहे अब कैंसर उपचार करा सीएमसी कैंसर इंस्टिच्यूट में नई लिया जांच कैंसर विरुद्ध आंसर को किरण सीएमसी कैंसर इंस्टिच्यूट
2: फोन 0556 494333 4995555

IES Certified अतिरिक्त क्रिया कलाप साथी यह कलेज ने विद्यार्थी में रहकर अंतर्निहित प्रतिभा पहचान करी उजागर कर मदद करते आक शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा मनासुनी वर्ल्ड कलेज साधन सूचीवादी संपर्क नंबर 9803623 82 9803623 87

गुड आफ्टरनून नमस्ते नमस्कार सम्पूर्ण हार्दिक स्वागत को साथ में कार्यक्रम गीति गीत लेकर तपाईको रेडियो सेट में फिर भी हम उपस्थित भइसकेका छौं। हमला यह समय में पूर्वी नेपाल की पहिलो सामुदायिक रेडियो सोलह एफएम 101.2 मेगाहर्ज में कार्यक्रम गीति गीत सुनी रहने गीति गीत को बसाई में विगत सदाज हम फिर भी तपाईको रेडियो सेट में गुंजन थाली सकता छौं। हम श्रोता पक्की कार्यक्रम गीति गीत को पर्खाई में हन्थ्य तपाईको पर्खाईको समय पनि समाप्त भइसकेको छ र तपाईहरूसँग मिठा मिठा कुराकानी गर्दैछौं। तपाईको हालखबर बुझ्नेछौं, तपाईको मौसमको अवस्था पनि हामी बुझ्नेछौं र तपाईको रोजाइमा सफल गीत सुन्दै हामी एकदम मनोरञ्जन गराउनेछौं। ढिलाइ नगरीकन सुनौ आज बुझ्ने गीतका क्लिप्सहरू।

युवा कृषि पर्यटन मार्फत समृद्ध मध्य दूतकोशी समावेशी विकास का आधार उत्पादन रोजगारी का पर्यटन को केन्द्र मध्य दूतकोशी को समृद्धि मध्य दूतकोशी गांवपालिका सोनपुंड के सहकारी में उत्पादित रेडियो कार्यक्रम समृद्धि हरेक महीना को दोस्तों बुधवार सांस साढ़े सात बजे देखि आठ बजे समय सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज अनलाइन सुनो एफएम को फेस मार्फत विश्वभर सुन्न सकूने कहाँ पुग्यो कहाँ पुगेन जनप्रतिनिधि को नजर विनियोजित बजेट को काम र प्रभावकारिता नागरिक को गुनासो र सुनवाई समग्र स्थानीय तह को विकास र सिद्धि नेता सोलन गांवपालिका सोलखुंड को सहकार्य में उत्पादित रेडियो कार्यक्रम हाम्रो नेता सोलन हरेक महीना को पहले सोमवार और अंतिम सोमवार सात से साढ़े सात बजे देखि आठ बजे समय सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज www सुनो एफएम को पेज मार्फत विश्वभर सुन सकूने नेपाली सेनामा नयाँ सैन्य भर्ना सम्बन्धी सूचना नेपाली सेनाको स्वीकृत दरबन्दी भित्र रिक्त रहेको सैन्य पदको दरखास्त आह्वान गरिएको हुँदा आवश्यक योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकतालाई नयाँ भर्नाका लागि आह्वान गरिन्छ। स्थानीय दुर्गापथ फोन ओखुढुङ्गा ब्यारेज ओखुढुङ्गा दरखास्त आह्वान मिति यही पुस्तक 18 गतेदेखि जेठ 16 गतेसम्म दोब्बर दोस्रो घुसाई मिति जेठ 17 गतेदेखि जेठ 23 गतेसम्म थप जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 0 35 5 5 5 6 7 साथी भ्रमण सम्बन्धी थप जानकारी को लागि यही पुस्तक 18 गति को गोर्खापत्र दैनिक र नेपाली सेनाको वेबसाइट www.nepalarmy.com मा लगइन गरी हेर्न सक्नुहुन्छ।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Soundcheck. Sony FM. In studio time.
2: It's 5 p.m.
3: न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई अफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 5 सोलू कुंभ।

0: radio next to your heart.
1: Solo FM 101.2 MHz.
2: TWR नेपाल नेशनल जो मार्गदर्शन रेडियो ला प्रस्तुतिले जय मसीह. जी क्यों मोबाइल डाक्टरी सिंक्यून तां दुप्पी पर लासन निजी की त्यंदो प्लियामु के निदिनी लियामु के निद्याबीन
3: आरिन देतियोला लोंसन तेंस दिने तमर देनेशे आरिन देतियोला मेरी की दोगा चाने देती बला कौन जगह सों नाथ नीतिरोला दीवी दी सकला तनंगा जय वाले सों वैसे डगबी दिखना गुबी की शकला डगबी की पावर से होतां सेंगे तू कौन जो सुनते किरण कौन जो इंसिने ये खरा से हो यीशु क्रिस्ट लाम कोरोना छोटी नाम सों ये डगबी दिखने की छावा चोरने दिन तमाम डगबी दाखिला कोई ला तुमुला फिर नाम सों खुदरां चेंग बु कौन जो जुनां वे समको आतिरां तंजी कौन जो जुनां वे सिरुं पर लाम भुजने ताम जाइन तैं चुरुंगा छावे यीशु की चुरुंग सिना वमला तमाम बाय बाय चुकुंग सिना वमला जमनिन की तेरी मितिवे कौन जो जो की हिरु तम लाम नला उतना जानी तें जन वे लोंग जनो जमनिन की था मलाम लोंग नी लोंग दो गोसुं सिसेन तमा तमी नी लुंबलाम लोंग नी लोंग दो गोसुं सिसेन निशा लुंबजी लुंग थम लाम लोंग नी दो गोसुं सिसेन तमा तमी जोग थम लाम लोंग नी हा गोसुं सिसेन ती खेला की मितिवा लाम कौन जो जो की नी नो सिने थम लुए तमा ती दोहे ये थम लाम भेगर दे कौन जो लाम तिमला ना मोतुं सी सिरो नलाई की दंदे वाला थम ने कौन जो सेम सब लाजी थम लाम तमा खोला गालों मुझी थम लाम तमा छेतर छेतर तांग भूमि की जिसे सोती वाम तुम बुला छोई जी नौ तमा चेरा की मिस्री दी वालाम तुम जाने तेर के वे चुरुना छो है जिसना लो भूमि की बमलाम मल्ला पेला लो पढ़लाम ये दो जाने सिगाव तांग छोरा जी ना सुन ला वजो यह तेरा मिर्ची गोती वा जी नौ तमा ते मोतु बुलाम दिवासा जी नौ तमा तीन जुलाम से तो मिटुआ जी नौ तमा तीन की तुरसने से पुरमें दोला कुंजी निजी नौ मैं मना वह नला तेन दिन वह के गीतां दे चे इंजन चंग बनाई तमा नीतोला की पर के निशी दूर कर ला मुदुगे ताम दे अच्छा नहीं तमा लोग ना सलीन रहा पर ला नते पास से युकुम सलीन तमा ना हो तब बनी निशी दूर लोग मरा गर्मी सा वह तमा नते पिरामिड नंग ला सुनी सा वह तमा ते अच्छा नीतोले रो युकुम दाम दे अच्छा थम वह किला तरोंसा दर्द जी पूरा इंजन सिरे इन नाना जी भारत वाला दिन नहीं जुगना हो नेती पिरामिड जी नंगलाम मोतुक की मोतुमु लाम जीवा चिला जो इन नसने तुझे उतने जंग को जोक नंगे मन लग बा जाने हाँ को चालो तमा ते चिला से मजू गो युको भी इंजने तामसा हाँ को चालो मुझे क्या ये उतने ये दासला चाला इस अन्य पुरुषों से जिन जैसे प्यामा चंदु सो जुए तमा से ने जो पान की तगड़ा ने तिकी नंगे से बुनी नाओ तमा चुनौती तिकी से जुए तमा ने तरो मां हाँ को तां निमुला से लिंगे जिनिशा लुंगे निकुए हारला था तो क्या जाने छेतुम लागा चिनाओ निमु कुंगा जुए जे तीजे लोग तला मधुम वो तब के तुम्हीं वाला सांग ये खोज जुए सिनिनो जिनाओ तमा ते नुबला ते रहा जुए तमा नुबला ते तिला तिवा तिला आने निदियो निदिला देंगे ते जिनाओ तमा ते निदियो मले हैं जिन की सुरते निंदे सिने तुए जे उदना ते जावे आनीन तुम्हीं के वाला खरे थार बंबा जोको नो जिनाओ तमा तुम्हीं की पिरामिड लाम संभव बंबे जो तिवा लावा तिवा तमा साफ तिवा ज्योतिवाम तम तेरे पर ये चालक तिवाम ये जोगी नौ यो खड़े थारो तुझी जरूर तमाम तुझी ला उदम योगी नौ तम तीव मलती विखासिन तम तेरा दे इसलिए नौ जी नौ तम लोग तुझे तेरे काम की तिलसी नहीं जोगी नौ तो क्या ने तीन ये मलाम ये लला ये फायन ये तीन लाम कहाँ वह शुरू कर लाम इधरां चंग बोते हैं तेरा नमसा लो ताऊ तम से चुके सांग लला छिदो फायन मिलकवा फायन ताऊ कौन जो ये कर लते रो मिलकवा ये नंदा क्या ने लोग कौन जो ये बोते ये बोलो नो इंसिन दरबी ये कौन जो जो अचिरां वो जो है तम लेमा जाने लाग चिरो चुलते इधर सासे लेमा निशान जो ऐसे नहीं सिंधी सिंधी सिंधी तमा दुबरन जानी कौन जाके समझते कौन जरन जानी जुनाम जुए तमा खोई की दाग बलाम कौन जाके नासम शोर की थगलाम खोई की से वे सु खिसलाम तमा नंगो निंसिरो करलाम तिखार से खोई की दागो सला छर नासम जोन अच्छा है संगे छोई की रोकता ना भला गाना बोले मताम सिरते खोई की भूमि निंजोला नारिंग 나가게 들어인 다음 예수님 민기 담나와인 니 예수님의 때를 들리와인 다만 코알라 때를 담 경보증와인 나그 코알라 우등한 우등한 렘의 제력 땜된 자와인 나꾸라 로쿤남 우등한 렘의 제력 땜된 자니와인 나그기 세임 길무디 우등한 땜된와인 니 제라 자니님 너 렘의 자니 나그 가당 저기 강사 담기 골라 담 기특기비 수고해서 담라 관적지 사람이 돌아 빚는 거에 그만 가당이 후대지라민 버진 벌라사민 이게 후드나 자네 부부기 가당당 지원에서 로그빈 덕분이 야의 주의지 골라 외나 연연아 흠통당 그여다 강도였으니 유지하고 유행 그만 주의지 땀이 뜨라 우리자네 지원아 지원아 예수로 모시듯당 코알라 코알라 럭자마다마 유지지 예득빙에 뜨라 제기 가당드라민 로샘 김무다마 기가단 시간이 길무트베 기계 텐더지 띠인지 권자 다구라 다구이심라 가단 빈나오엔 담만 다구이 럭슴니 와시니 하코니 나서치오엔 시시마 다구치니 되어 와시니 다구이 나서또 문고에 농철하기 예수 크리슬람 모시와 담아코알라 코레 럭템아 담아 코알라 빈니 외숭 스신 철하기 하코인지 철학이 샤아토모에 담아놈 철학이 샤아토모에 담아 철학이 하코진지 철학 남사 남으로 니기 덥니와에 이 후드나 자니 덥니와에 권자리 뒷방부 자나와에 담아 코이기 자나와 방부 코이기라 늦기기에 우라 자니 예수 그리스도 돌아 니들의 민도 빈나무인 나고 디기 바라지시나 오늘 아테와라 하니 시노에 담아 테리기 다꾸라 나섬 뚜리기 이 닭의 권자리 덥니 권자라 유나와에 코이기 코이
4: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो
3: Sunday afternoon, studio tonight.
0: It's 7 p.m. Start to start with.
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा भरामाई ऑफसेट प्रेस सोलुदुतु नगर पालिका 5 सोलुखुम्बु

0: 才华村索路 FM
1: 索路 FM 101.2 MHz
0: 우주원 더비쉐코 라기 한국어비안
2: 장인체 소리 FM 스튜디오 타임
3: It's 8pm 아트코 아트워즈
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका पास सोलू खुम्बू
2: प्रश्न विचार यू रेडियो नेटवर्क अहिले राति को 8 बज्यो
3: यो समय किसान पाइन प्रोडक्ट्स प्राली को हो
2: राष्ट्र को स्थान किसान
3: अ कंप्लीट फाइटिंग सॉल्यूशंस

0: तामाङ अन्ठानब्बे सड़चालिस सतासी पैंतिस उन्नाइस समुन्द्र साक्य अन्ठानब्बे एकसठी तिरासी पैंतिस चौतिस टेलिफोन शून्य अड़तीस पाँच बीस दुई सय त्रिचालिस नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर प्रोपाइटर तोरण कुमार श्रेष्ठ अन्ठानब्बे बैसठी बयासी तेह्र सतासी नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर सँगै न्यू आइस मोटर पार्ट्स एण्ड सप्लायर्समा सम्पूर्ण गाड़ी मर्मत सम्बन्धी सेवा उपलब्ध छ। यहाँ साना तथा ठूला जुनसुकै गाड़ी मर्मत गरिन्छ। सम्पर्क रमुना श्रेष्ठ अन्ठानब्बे बैसठी तिरानब्बे शून्य छ छयालिस नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका साथ गारमा चोर बौद्ध सुलुखुम्बु
1: बाबा मलाई आज स्कुल जाने मन छैन आज जाँदैन नि है
2: के भयो सन्चो भएन
1: होइन यतिकै जाने मन लागेन
2: यति